0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6.

आज का दिन एक कहानी के साथ शुरू करें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और कभी कभी ना जो हमें दिखता है सच उससे बिल्कुल अलग होता है, इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है। और इसको एक कहानी के साथ मैं बताना चाहूंगी, जहाँ एक माँ और बेटी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी रिलेटिव के घर से लौट रहे होते हैं, और बेटी का कंप्लेन मोड फुल ऑन होता है कि मम्मा कितने अजीब लोग थे ना, चाय देखा कितने पुराने कप में दी हमें, बेडशीट देखी आपने कितनी गंदी सी, इतनी पुरानी सी थी, घर भी कैसा था, इतनी सीलन लगी थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे ये लोग। माँ ने सुना सुना सुना, फिर कुछ देर के बाद में बस बोल पड़ी कि बेटा वो गंदे और अजीब नहीं थे, अजीब तुम्हारी सोच है। पता है जिस कप को तुम पुराना कह रही हो ना, उसमें उन्होंने तुम्हें चाय दी, और खुद जिस कप में उन्होंने चाय पीना वो ऑलमोस्ट टूटा हुआ था। हाँ, पुरानी बेडशीट पर बिठाया जरूर, लेकिन तुम्हारे सामने वो एक पंखा रखा जो पूरी टाइम तुम्हारे तरफ था, और वो खुद गर्मी में बैठे रहे क्योंकि वो चाहते थे कि तुम कंफर्टेबल बैठी रहो। तुमने उनकी चीजों की कीमत देखी पर उनकी नीयत की कीमत देखी ही नहीं है। मेरे ख्याल से ना दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं वो लड़की वो बेटी की तरह बन जाते हैं। हम लोगों को देखते बहुत हैं पर महसूस बहुत कम करते हैं। हम किसी के कपड़े, घर, बोलने का तरीका, उनका बिहेवियर, एक दो चीजें देखी और पूरी कहानी डिसाइड कर ली, पूरी तरह से हम जजमेंटल हो गए। तो बस आज इस खूबसूरत सुबह पर इतना ही कहना चाहूंगी दैट लोगों को परखने से पहले थोड़ा महसूस करके देखिए, क्योंकि हर इंसान की एक तरफ की कहानी होती है जो हमें नजर नहीं आती। विद दिस खूबसूरत ख्याल, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्शियत्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
1: Milci.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? 4 balls left, दे नीड 12 runs टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, where she is absolutely reading the mind। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सुनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: ये गाड़ी पर सवार होते होते आपने ये गाना सुना राइट यस शिरीषा भागवत की आवाज में वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हैव अ ब्लेस्ड डे मोहम्मद खालिद और हे आफरीन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आलीशान का मैसेज आ गया है नाजनीन जी का मैसेज है सो वेल गुड मॉर्निंग के मैसेजेस 5000 1896 व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मीन वाइल जरा देखे ये गर्मी का क्या हाल चल रहा है कहते हैं थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ने वाली है आई मीन रियली
1: नाम तो जानते हो मेरा तापमान सलमान
2: वेदर अपडेट
0: वेल वेदर देखो आज अगर आंकड़ों में देखा जाए तो ये कहता है 41 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हालांकि ये पिछले 3-4 दिन तो 44-45 चल रहा था कहने के लिए 41 डिग्री सेल्सियस है एक्चुअल फील्स तो उससे कोई ज्यादा है मिनिमम 33 डिग्री सेल्सियस चल रहा है ह्यूमिडिटी ही तो खेला है बाबू शाय क्योंकि अगले 3 दिन आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल शायद नहीं लगेंगे कतर में बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल्स विल बी राइजिंग रियली हाय मतलब कल रात से ही बढ़ गया है एंड दिस इज गोना गो ऑन अंटिल द मॉर्निंग ऑफ ट्यूसडे दैट इज 18th अगस्त तक चलने वाला है अब इसकी वजह से क्या है ना शायद मिस्ट फॉग फॉर्मेशन ये सब कुछ होगा तो जिसके वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो शायद कम होगी टू लेस देन 2 किलोमीटर एंड समटाइम्स इवन 0 विजिबिलिटी तो बस यही है कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं हालांकि अभी सुबह में व्हाइल आई वाज कमिंग हियर आई कुडंट फील दैट कि विजिबिलिटी में कोई इशू है लेकिन ड्यूरिंग द डे शायद बढ़ सकती है ह्यूमिडिटी की वजह से तो भाई ध्यान से गाड़ी चलाओ भाई Meanwhile, माइक से दिल तक आफरीन तो अभी जुड़ी है एंटरटेनमेंट का सिलसिला तो बस शुरू ही हुआ है सो वेल निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में अगला गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: पीछे।
1: आदित्य की आवाज में ये प्यारा सा गाना राइट हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन का साथ जुड़ गया है। और देखिए, ऐसा कई बार होता है कि अगर आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसा होता है, मतलब इट्स नॉट समथिंग नॉट नॉर्मल और समथिंग, लेकिन ऐसे में इंडिया की तो ज़रूर आदत होती है कि जब कहीं पर बॉम्बे हो या कोई जगह पर कहीं पर कोई लड़ाई कर रहा हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो लोग ऐसे चार लोग पूरे घेर के खड़े हो जाते हैं, वीडियोज़ बनाने लगते हैं। लेकिन अगर ये काम आप अगर कतर में करने की कोशिश करोगे, अगर आप फोटो लेने की कोशिश करोगे ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स स्पेशली, यू इट कैन लीड टू जेल और एल्स 10,000 कतरी रियाल फाइन भी हो सकती है। बहुत ही महंगा और भारी भी पड़ सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड अंडर द कतरी लॉ। तो बस बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर कुछ ऐसे गंभीर स्थिति है जहां पर विक्टिम की जरूरत है, तो आप वहां पर पुलिस को बुला सकते हैं। यू कैन कॉल एट वॉट एवर, बट देन आई डोंट थिंक सो डेफिनेटली, आई मीन यू शुड नेवर be taking a photo or video of the people injured in an accident right here. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और अगले गाने की तरफ बढ़ती हुई लापता लेडी से अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना। हाय, माइक से दिल तक बने रहिएगा आफरीन।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है,
2: है।
3: मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन वरदाना के पूछो पापा एक्टिंग या मैं
3: ये क्या सवाल है
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं
5: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live in

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
2: वेरी गुड मॉर्निंग. मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची फ्रॉम द मूवी लूडो. कमिंग अप नेक्स्ट एआर रहमान की आवाज में एक ऐसा गाना जो शायद आप बहुत साल बाद सुन रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर आपके जब 2000 के एरा में ये गाना आपके प्लेलिस्ट में जरूर था, वो वाला प्लेलिस्ट जो आप डेस्कटॉप पे लगा के सुनते थे डाउनलोड करके. याद आया ये गाने के उस पार. मैं मिलूंगी आपको. Join this track, right around Mirchi, it's hot.

0: भले ये रहमान की आवाज में ये गाना, व्हाट अ सॉन्ग यार, फ्रॉम द मूवी यूआर. चलिए जरा बात करते हैं खेल जगत की दुनिया से. अब सोचिए कि आप कई मैच देखने जाते हो तो सिर्फ जो खेलने वाली टीम है उन्हें ही पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, अब से आपको भी पॉइंट्स मिलने वाले हैं. यस यू हर्ड राइट, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है और आज की सबसे बड़ी खबर में
1: क्या खबर कतर,
0: खबर ये है दैट कतर में लॉन्च हुआ है हायो, एक नया स्पोर्ट्स फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म. हायो इज स्पेल्ड एज HAYOH, हायो. आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट. और इसका फंडा ना बड़ा सिंपल है, Buy, attend, earn and redeem. Yes, मतलब eligible sporting event का कोई भी ticket आप लेते हो, event आप attend करते हो, attendance verify होने के बाद 1000 base points आपके सीधा account में. अब इस points का फायदा क्या है? Points का फायदा आपको ऐसा मिलेगा कि आपको rewards, offers और experiences, ये सारी चीजें आप redeem कर सकते हैं. Isn't that interesting, है ना? और yes, Qatar ID holders यानी residents के लिए membership absolutely free है. 12 से 17 साल के यंगस्टर्स भी पैरेंटल कंसेंट लेकर ये ज्वाइन कर सकते हैं. और मुझे इसका इंटरेस्टिंग गेम पार्ट जैसे ये लग रहा है, ये गेमिफिकेशन ऑफ फैंडम इसे कह सकते हैं. जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना मेंबर से ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और इवेंचुअली ये प्लैटिनम टायर तक जा सकते हो, है ना. बेसिकली कतर क्या कह रहा है कि सिर्फ सोफा से बैठकर क्यों चेयर कर रहे हो बॉस, स्टेडियम जाओ ना और पॉइंट्स भी मिलेंगे. एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ क्लेवर मूव बिकॉज कतर का स्पोर्टिंग कैलेंडर अभी और बिगर होने वाला है विद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 और एशियन गेम्स 2030 कमिंग अप. सो हायो इजंट मियरली अ रिवॉर्ड्स ऐप, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म स्टेडियम गोइंग कल्चर इन कतर. स्पोर्ट्स लवर हो तो नाम याद रखना हायो, HAYOH. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यही रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: फोन मत करो मैं इनबॉक्स बना
3: दूंगा क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स पावर दैट सेव्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट शायद अब कतर वालों का फुटबॉल से बास्केटबॉल पर शिफ्ट होने वाला है जल्दी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और 27 अगस्त को कतर की नेशनल बास्केटबॉल टीम फेस करने वाली है चाइना को और वेन्यू है अल जनूब अरेना। टिप ऑफ 7 PM और बेस्ट पार्ट एंट्री इज फ्री। लेकिन मेरे लिए मैच से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है इसका वेन्यू। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में इसी अल जनूब ने 7 फुटबॉल मैचेस होस्ट किए थे। अब इसी 44,000 प्लस कैपेसिटी फुटबॉल स्टेडियम को ट्रांसफॉर्म करके अराउंड 8,200 सीट एनक्लोज्ड बास्केटबॉल अरेना बनाया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू फीबा दिस विल मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टेडियम टू होस्ट अ गेम इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। अब दैट इज द मैजिक ऑफ कतर आई वुड से। एंड आई थिंक सो दिस इज नॉट जस्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू, इट्स री इन्वेंटिंग वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, दैट स्मार्ट स्पोर्टिंग लेगेसी। बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम सिर्फ पोस्ट कार्ड नहीं बना, उसको एक कम्प्लीटली न्यू स्पोर्टिंग लाइफ मिल रही है। और 27 अगस्त की डेट भी राधा पोएटिक है बिकॉज एग्जैक्टली 1 ईयर लेट 27 अगस्त 2027 दोहा में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टिप ऑफ करेगा। इनफैक्ट 32 टीम्स और 92 गेम्स ऑल इन वन सिटी। सो दिस 27 अगस्त 7 PM कतर वर्सेस चाइना अल जनूब अरेना, फुटबॉल का घर बास्केटबॉल का कोर्ट। कतर क्लियरली बिलीव्स वेन्यूज शुड हैव अ सेकंड इनिंग्स टू। माइक से दिल तक आप शीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

मस्त। कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC Supply.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah.

0: हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गाना राइट योर मिर्ची, और ये कुड़ी बिल्कुल भी अनजानी नहीं है आपके लिए। और वेल, ये कुड़ी आपकी मॉर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपके लिए गेम भी लेकर आई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट्स टाइम कि हम खेलें लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: ये तो आप खुद समझ सकती हैं कि वक्त और हालात के तहत गलतफहमी होना लाजिम था,
3: किंतु वास्तविकता जानने का प्रयत्न तो किया होता। समस्या यही है कि आप असलियत से कोसों दूर हैं। आप दिलों को जीतना नहीं जानते।
0: ऑल राइट, लेकिन आप तो असलियत से बिल्कुल करीब हो के नहीं। पता है ना कौन सी मूवी है? आई गेव अ वेरी वेरी सिंपल वन। मैंने कहा कि चलो मंडे ब्लूज वगैरह सब होते हैं, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी दे दूं आपको। बताइए कौन सी मूवी है ये? 5000186 इज माई नंबर माई फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पर आकर। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। यह आलोक का मैसेज आया है, हुसैब का मैसेज आया है, देन आई हैव टाइपिंग, बहुत सारे लोग टाइप भी कर रहे हैं। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। सो दिलजीत पाजी की आवाज में, डू यू नो द आंसर टू माई क्वेश्चन? अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
3: You know, I was very nervous क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor. On set वो मेरी पहली co-actor है, पहली मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं nervous थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी। अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
9: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah.

0: अजी नाजा, आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो अब बस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू ही हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम खेल रहे थे, जहाँ पर मैंने आपको सीन सुनाया था, आपने बस गेस करना था ये कौन सी मूवी है। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, यार कहाँ कहाँ से आप ये नाम दूसरे सोचते हो, मतलब कैसे? मुझे तो लगा था ये वाला तो बड़ा ही ईजी है आपके लिए। चलिए सुन लीजिए, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम कर हाय और ध्यान से ये सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: ये तो आप खुद समझ सकती हैं कि वक्त और हालात के तहत गलतफहमी होना लाजिम था,
3: किंतु वास्तविकता जानने का प्रयत्न तो किया होता। समस्या यही है कि आप असलियत से कोसों दूर हैं। आप दिलों को
0: ऑल राइट, लेकिन आप असलियत से काफी करीब हो। सो वेल, 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। अब इस वक्त पर तो आप वॉइस मैसेज नहीं, लेकिन मैसेजेस टाइप्ड मैसेज जरूर डाल सकते हो। और मैसेज ऐसे आए हैं कि ये ऐश्वर्या और शाहरुख खान की आवाज है, ये देवदास मूवी का है, नहीं कालीन साहब ये देवदास का नहीं है। फिर यहाँ पर कोई मुगले आजम कहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये वो भी नहीं है। वेल यहाँ पर अब चाली का मैसेज आया है, देन आई हैव अलोक मैसेजिंग मी बट व्हाट इज द राइट आंसर। हुजैब का भी मैसेज है, राइट आंसर चलिए सुन लेते हैं यहाँ पर। हेलो,
4: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
4: द नेम ऑफ द मूवी इज जोधा अकबर,
0: डायरेक्टेड
4: बाय आशुतोष गुवारिकर।
0: हाँ जी,
4: एंड लिरिक बाय जावेद अख्तर, म्यूजिक बाय
0: क्या बात है
4: माइस्ट्रो एआर रहमान।
0: क्या बात है,
4: प्रोटैगनिस्ट आर ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय,
0: बिल्कुल सही,
4: सोनू सूद एंड मनिया।

आपने तो सारी डिटेल्स बता दी हैं, यहाँ पर मेरा काम बिल्कुल ही कम हो गया है। वेल यस, जोधा अकबर का ये सीन था और जोधा अकबर का जो ग्रैंड सेट एंड एवरीथिंग वाज ग्रैंड अबाउट दिस मूवी, स्टार कास्ट से लेकर सब कुछ। लेकिन डिड यू नो कि जोधा अकबर में 80 एलिफेंट्स, 100 हॉर्सेस एंड 55 कैमल्स यूज किए गए थे। मतलब क्या सीन रहा होगा ना वहां पर शूटिंग के वक्त पर, मजा ही आया होगा। जोधा अकबर की बात अगर की हो और ये गाना नहीं सुना है तो कैसे हो सकता है। जावेद अली की आवाज में खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings
0: with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
3: Mirchi 1. It's hot. Mirchi घड़ी का इशारा सुबह के 8 बजे की तरफ. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. It's hot.

देखो जनरली तो हम सुकून का सिनोनिम कतर कहते हैं, लेकिन कन्वीनियंस का सिनोनिम भी कतर है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और देखिए कतर को बखूबी पता है कि किस तरह से अपने रेसिडेंट्स और सिटीजन्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया जाए। वैसे ही यहाँ पर हमारे कतर में दोहा मेट्रो और लुसेल ट्रैम कितने सारे लोग यूज करते हैं, और वो लोगों के लिए जो एन खालिद और अल सनीम की तरफ रहते हैं। तो बस ये गुड न्यूज बस उन्हीं के लिए कि एक सर्विस अपडेट हुई है अनाउंसिंग अ न्यू मेट्रो लिंक रूट M304। आई रिपीट, इट्स M304। ये जो है इट विल ऑपरेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स सिटी एग्जिट 5 स्टेशन ऑन द गोल्ड लाइन ऑफ द दोहा मेट्रो, और ये जाएगी एन खालिद और अल सनीम एरियाज में। तो वो एरिया में जो लोग रहते हैं जिनके पास मेट्रो में जाने के लिए उन्हें टैक्सी करनी पड़ती है और फिर कहीं जाते हैं, देन दिस मेट्रो लिंक, ये जो बस है M304, ये आपको सीधा लेकर जाएगी। अब ये जो न्यू रूट है इट हैज अ टोटल ऑफ 30 स्टॉप्स। तो आई एम श्योर आपके घर के करीब कहीं ना कहीं वहां पर जरूर होगा, और आपके लिए भी अब मेट्रो और ट्रैम यूज करना उतना ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। राइट इट ऑन मशीन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vida la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
5: हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ, तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
3: है,
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर, एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स, लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे, TNC अप्लाई।
7: It's all down to Donnie, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट, आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट,
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये,
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

तकबीर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची द रीमिक्स वर्जन, और वो गाना जिसके ऊपर हमने बचपन में बहुत ज्यादा ओ हो किया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए चलते हैं थोड़ा गाने शाने की तरफ से, थोड़ा पैसों की बातों की तरफ चले। देखिए एक्सचेंज रेट आईपे का ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीज 26.15, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.18, बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.73, और श्रीलंकन रुपीज इज एट 91.23, और अगर नेपाली रुपीज की बात करें तो बंधुओं इट इज एट 41.78। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन पर आफरीन के साथ। और जहां पर हमने सुखी बाजी की आवाज में गाना सुना था, लेट्स हियर हमारे पंजाबी ओजी पॉप स्टार यानी दलेर पाजी की आवाज में वो गाना जहां पर हम इतना झूमते थे हर पार्टी में, हर बर्थडे पार्टी में। सो यू गॉट टू लिसन टू दिस एंड Drive back into nostalgia only on Mirchi. It's hot.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu. बुक योर्स नाउ.
0: द मेंटलिस्ट सुहानीशा.

0: Well, that is Satyajit Tandon ki awaaz mein. Steven Bin ka saath, Parampara Tandon ka saath, writer on Mirchi, Jersey movie ka aapne ye gaana suna. Aur Mirchi ghadi ka ishaara ho raha hai subah ke 8:42 ki taraf.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: To chaliye, game khele. Very good morning and welcome back. It is time for Mirchi Mystery Box. हाँ जी, एक mystery box मैं रोज खोलती हूँ और उसमें से एक चैलेंज निकलता है आपके लिए. तो आज का चैलेंज क्या है? Mirchi Mystery Box. So well, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी गाने की धुन, या फिर आप कह सकते हो गाने की शुरुआत की धुन. बिल्कुल वो जो स्टार्टिंग ओपनिंग म्यूजिक होती है ना, वो सुनाने वाली हूँ. और आपने गेस करना है कि यार आफरीन आखिर कौन सा गाना सुना रही है. ओके, सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये सुनो.

All right. I think so. This should be good enough, है ना? 5001 H96 is my number. WhatsApp number है. यहाँ पर आओ, मैसेज करो, वॉइस मैसेज भेजो, गाना गा के सुना दो, जैसे आपकी मर्जी. ठीक है, फटाफट से थोड़ा सा और सुनोगे? चलो ठीक है. बस बस बस बस, बहुत सुना दिया. चलिए 5001 H96 पर आकर बताइए कौन सा गाना है ये. तब तक के लिए देव नेगी और नेहा कक्कर की आवाज में एंजॉय दिस ट्रैक ऑन व्हिच यू थॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधू टीवी एक्टर बालों में क्या लगाते हैं ये बता क्या चले जाएंगे इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
3: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
2: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: वो अपनी आंखों में खुद ही खो जाता सिवाय सिवाय किसी जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

मधुबंदी भाग छे दिव्य कुमार सचिन जिगर की म्यूजिक और ये गाना स्त्री टू से राइट योर ऑन मिर्ची वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और आज ना आफरीन आपको गाना गाने पे इतना इंसिस्ट कर रही थी और आप तो शर्माने लग गए। वेल क्या बातें चल रही हैं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स मैंने खुला है और फिर उसके बाद में एक धुन आपको सुनाई है और आपने गाना पहचानना था। सो इजी बीजी राइट मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। तो ये रही गाने की धुन।

0: All right. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. Let's hear the right answer.
1: Hi Afreen, good morning. This is Princess.
0: Hi Princess.
1: The song is Chalte Chalte from the movie Mohabbate.
0: All right.
1: I wanted to sing but my voice is very bad. Sorry.
0: Okay.
1: I'll try next time.
0: You should definitely.
1: Okay. Yeah. Thank you and wish you a very lovely day.
0: You too. Have a great day. ऐसे ही यहाँ पर और भी messages आए हैं. मोहम्मद यूसुफ खान का था, जाहिद है, ताहिर ने मैसेज किया है. Then I have someone here जिनका नाम बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है. और फिर ये कौन है, शुभम रस्तोगी, इनका भी मैसेज आया है सेइंग दैट मोहब्बतें मूवी का ये गाना. और ये वो वक्त था मोहब्बतें मूवी का जब अमिताभ बच्चन वाज हैविंग हिज डाउनफॉल. फेज अच्छा नहीं चल रहा था. केबीसी तभी आने वाला था बट एट दैट टाइम नो मेकर्स वर अप्रोचिंग हिम फॉर मूवीज. तब यश चोपड़ा ने इनके पास ये रोल लेकर गए एंड दैट्स हाउ अमिताभ बच्चन को एक नया अवतार मिला था एज अ फादर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सीनियर का रोल करने लगे थे आफ्टर दिस मूवी. तो चलिए हो जाइएगा ना उद्भव मनोहर शेट्टी ईशान श्वेता की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: Mirchi One. It's hot.
3: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9 बजे की तरफ और बैक टू बैक गाने हैं सज राठौर की आवाज माय फेवरेट सिंगर राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: साल माधा सोबत 89.6 मिर्ची 1 पर, यानी संजू राठौर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे साथ चल लो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन रुची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, बच्चों की अब छुट्टियां कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, और ऐसे में अगर बच्चे अभी भी इनका मन नहीं भरा है ना कि नहीं कहीं तो कुछ करना है, बाहर जाना है, ऑफकोर्स हम आउटडोर के ऑप्शंस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि ऑफकोर्स वेदर अलाउ नहीं करेगा। लेकिन हमारे कतर में एक अच्छी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है कतर के बेहतरीन म्यूजियम्स। ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को एंटरटेनमेंट, खास उसके साथ बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, जैसे हमारा म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट तो है ही, एंड बेहतरीन बात यह है कि ये सारे फ्री है, राइट? कतर रेसिडेंट्स के लिए तो फ्री है ही, तो व्हाई नॉट विजिट देम विद किड्स। सो वेल, एक म्यूजियम डे करके आप बच्चों को पूरा दिन अलग अलग म्यूजियम कतर के लेकर जा सकते हो। पता तो होता है आपको, बस कभी कभार ऐसे एक आइडिया देना होता है और रिमाइंड करना होता है, वो काम मेरा होता है। सो वेल, जैसे मैंने बताया, मियां पार्क यानी म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट म्यूजियम है, वहाँ पर लेकर जा सकते हैं बच्चों को। 3-2-1 कतर म्यूजियम जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर बच्चों के लिए ना बहुत सारे एक्टिविटीज भी है। देन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फैंटास्टिकली लुकिंग म्यूजियम आई वुड से, एंड दैट इज अ नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर विच इज मेड इन द शेप ऑफ अ डेजर्ट रोज। आई मीन द आर्किटेक्चर इज सो ब्यूटिफुल, और अंदर से उतना ही ज़्यादा ये मॉडर्न है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज़ है। सो समटाइम्स वी एक्चुअली फॉरगेट कि कहाँ जाना है, क्या जाना है, कौन से मॉल जाए, कौन से प्ले जोन जाए। सो वाई नॉट अ म्यूजियम, थोड़ा नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। मीनवाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड बादशाह एंड निकिता गांधी की आवाज़ में ये नया गाना ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: I like the way I'm over right there.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vieta la burga. Mirci, burga.
2: Mirci.
3: It's Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
2: ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
3: दिमाग खा रखा है।
4: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
3: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah. Live

0: देखो कतर की गर्मा गर्म खबर तो लेकर आती हूँ, लेकिन जरा थोड़ी स्पाइसी खबर का टाइम आ गया है। यानी बॉलीवुड की खबर,
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: देखो मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है दैट अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान आर गोना कम टुगेदर आफ्टर 18 इयर्स इन अ मूवी डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन, जिसका नाम है हैवान। एंड इनफैक्ट इसका टीजर भी आ चुका है। अगली खबर में ये है कि वरुण धवन YRF यानी यशराज स्टूडियोज के साथ में, यशराज बैनर्स के अंडर एक नई हॉरर फिल्म करने वाले है पहली बार। वैसे पहले इन्हें हॉरर फिल्म किया है जिसका नाम है भेड़िया। अब ये नई क्या होगी जरा देखेंगे, वक्त ही बताएगा। उसके अलावा वक्त ये भी बता रहा है दैट रणबीर कपूर, आलिया एंड विकी कौशल एक मूवी में एक साथ नजर आने वाले हैं जिसका नाम है लव एंड वॉर। आई थिंक सो दिस इज गोना बी समथिंग इंटरेस्टिंग। ये तो रही बॉलीवुड दुनिया की अंदर की खबर। आप बने रहिएगा मेरे साथ यानी माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: देखिए आज की मेरी शायरी ना आपको वो पहला पहला प्यार और कॉलेज के दिन जरूर याद दिलाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन है आपके साथ और वक्त हो चला है कि आफरीन अपनी डायरी खोले और उसमें से कोई अल्फाज आपको सुनाए।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, नजर चाहती है दीदार करना, नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताओ पागल दिल का आलम, क्या बताओ पागल दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। वो दिन याद आ गया ना कि एक झलक, मतलब एक झलक ही लिटरली आके स्टमक में बटरफ्लाईज लेकर आते थे, एंड दैट वाज जस्ट इनफ। गुड ओल्ड डेज। मिर्ची पर आप सुन रहे हो माइक से दिल तक आफरीन को, बने रहिएगा मेरे साथ। और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live in

कभी सोचा है कि सेम सिचुएशन, सेम प्रेशर, सेम प्रॉब्लम, लेकिन दो लोग उसे बहुत डिफरेंटली हैंडल करते हैं? देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ मैं ये बताऊं आपको कि आप एक गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर ले लो और उसमें आप आलू डाल दो, पोटैटो डाल दो, तो वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और उसी बॉइलिंग वाटर में अगर आप अंडे डाल दो, एग डाल दो, तो वो हार्ड हो जाता है। देखिए, पानी तो सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, बस रिस्पॉन्स अलग है। और जिंदगी भी ना थोड़ी सी ऐसी ही है, सिचुएशंस हम चूज नहीं कर सकते हैं, बट वो सिचुएशन हमें क्या बनाएगी उसमें थोड़ा कंट्रोल हमारा भी होता है। तो आज के दिन में ऑफिस का प्रेशर हो या फिर लाइफ का कोई अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट हो, हर गर्म पानी में उबलना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस डिसाइड करना होता है कि इस एक्सपीरियंस से मैं बिटर निकलूंगी या बेटर। इसी थॉट के साथ मेरी तरफ से आप सबको एक खूबसूरत दिन आगे मुबारक हो, और मैं यहां से अलविदा लेना चाहूंगी। मिलूंगी जल्द, सेम टाइम सेम शो। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा, मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
0: अरे बेटा सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

0: लवली ट्रैक इट इज। वैसे एक बात तो तय है कि इस गाने ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हाँ, हर एक किरण को मशहूर जो है वो जरूर किया।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे इस वक्त आपकी जिंदगी में आशा की नई किरण, उजाले या रोशनी की नई किरण बनकर मैं जो हूँ आ ही चुकी हूँ। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से एक नए दिन के साथ नए शो की शुरुआत करने का वक्त जो है वो आ ही चला है। वैसे अगर इस गाने को मैं सोचूं या इस फिल्म की बात करूं, विच इज डर, 1993 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसे डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा साहब ने। बहुत ही प्यारा सा गाना है, उदित नारायण साहब ने गाया एंड इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो बाय शिव हरी एंड लिरिक्स जो हैं बहुत अच्छे अल्फाज किसी ने दिए तो वो हैं आनंद बख्शी साहब। एंड इस फिल्म में अगर आपको कोई नजर आए तो वो हैं शाहरुख खान, राहुल मेहरा को कौन ही भूल सकता है जी, जूही चावला, हमारी किरण जो हर एक किरण की सिनोनिम बन चुकी थी एंड साथ ही सनी देओल एज सुनील मल्होत्रा। लेकिन पता है डर फिल्म की बात करूँ ना तो इस फिल्म में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई पिक्चर नज़र आती है तो वो है ऑब्सेशन की। ये किसी शख्स के लिए ऑब्सेस्ड होना किसे कहते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए ऑब्सेस्ड होना किसे कहते हैं। देखो यार, ऑब्सेशन जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइफ में बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक बात कहूँगी कि ये ऑब्सेशन जब आपके लिए या किसी और के लिए घातक बन जाए ना तो इतना समझ जाओ कि ये जो है एक खतरे की घंटी है। तो कोई कहे ना कि जब तक तुम ऑब्सेस ना हो अपनी मंजिल को पाने के लिए, तुम्हारे अंदर वो चाह ना हो तो उसे पाओगे कैसे। डेफिनेटली वो होना चाहिए, लेकिन ऑल पॉजिटिव मीन्स एंड वेज जो आपकी मेंटल हेल्थ या किसी और की मेंटल हेल्थ के लिए सही हो, जहां पे वहां पे खतरे की घंटी आने लगे ना तो समझ जाओ जिंदगी में तुम्हारी और औरों की आने लगी। चलिए जी, इसी अच्छी बात के साथ, ज्ञान की बात के साथ नूरन सिस्टर्स की आवाज में बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, पटाका कुड़िया। ये गाना जो है तुम्हारे लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vizba la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर बढ़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
1: है।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: I'm sorry, नवे, I'm sorry.
3: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
1: कुकड़ो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल।
5: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारा।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

0: दर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज जोनिता गांधी का साथ, फिल्म का नाम इश्क विश्क रीबाउंड, एंड ये सोना सा गाना तो मैंने आपके बीच पेश कर दिया। फिलहाल ये भी बता दूं, मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10:19।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे इस वक्त अगर स्टेकेशन की बात करूं एंड उन दिनों को सोचने की कोशिश करूं तो भाई हमारे लिए तो ठौर ठिकाना केशन का हो, वेकेशन का हो या स्टेकेशन का हो, अड्डा एक ही हुआ करता था।
2: मिर्ची अंशु
0: यार, आज के बच्चे जिन्हें हर छुट्टियों में कोई नई जगह चाहिए, किसी नई प्लेस को एक्सप्लोर करना है, वो क्या जाने कि हर साल एक ही जगह जाना, उन्हीं लोगों से मिलना और उन्हीं हरकतों के बीच खुद को एंजॉय करना होता है तो क्या होता है। सच कहूँ यार, जब जब बचपन की गर्मी की छुट्टियों को याद करने की कोशिश करूँ तो मैं सीधा अगर किसी मोड में जाती हूँ तो वह है नानी का घर। भाई जहाँ पे जाने के लिए हम कितने बेसब्र, कितने बेकरार हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, कम से कम 10th से 11th grade तक हर गर्मी की छुट्टी अगर मैं सीधा कहीं पहुँची हूँ तो वो है अपनी नानी के घर। वहाँ पे मामा का हर शाम हमें घुमाना लेकर जाना, नाना जी का हमें जो कुछ खाने में पसंद है वो बिल्कुल घर पे लेकर आना, अगर मम्मी हमें डांटने की कोशिश करे तो उनकी मम्मी का उन्हें डांटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना, एंड मामा मामी के बच्चों के साथ ये घमासान घर पे न जाने क्या कुछ ना कर जाना। आधी रात को घर वालों के साथ मिलकर वो कार्ड्स खेलना, नहीं तो डार्क रूम खेलना, कभी चुपचाप जाके आधी रात में मैगी बनाना, क्या दिन थे यार। शायद हर साल हमने वही हरकतें की हैं लेकिन हर बार एक नया एक्सपीरियंस हमें मिलता था। छुट्टियां चाहे एक महीने की हो या दो दिन के स्टेकेशन की बात हो, एक्सपीरियंस जो है ना पूरी तरह से सेम। हैविंग सेड दैट, इस वक्त चूंकि हम कतर में पूरी तरह से मौजूद हैं, अगर लगता है कि भाई स्कूल खुलने में 2 हफ्ते बचे हैं उसके पहले स्टेकेशन मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए, तो कतर के सारे प्रोमिनेंट रिसॉर्ट्स में फैसिलिटीज में स्टेकेशन का स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद है बिल्कुल जाएं, जरा उसे एक्सप्लोर करें एंड देखें, एंड जाओ जी अभी जरा स्टेकेशन का मजा कतर में ही लेकर आओ। नानी के घर की बातें तो कुछ और है यार, लेकिन हाँ यहाँ का भी अपना एक अलग मजा है। दर्शन रावल की आवाज रोशन कोहली का साथ, यानी अगला प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाती हूँ, एंजॉय। फिल्म का नाम धड़क तू, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: खूबसूरत सी आवाज शिल्पा राव का साथ। एंड सच मेरे दिल की बात करूं तो आवाज के जरिए बस आपकी तरफ ये चलेया हाय, क्या गाना यार, फ्रॉम द फिल्म जवान। बस एक बात कहूं, जब जब शाहरुख खान से जुड़ा हुआ कोई भी मोमेंट होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का बादशाह जो है आ गया है। वो बात अलग है कि मैं बहुत बार चाहती थी कि वो मेरे साथ फिल्म करे, इनफैक्ट मैं उनके साथ करूँ, लेकिन यार डेट्स यू नो दे हैव बीन क्लैशिंग सो मच फॉर मी, उन्होंने दी नहीं कभी, क्या ही बोले।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड यार सच कहूँ, जब से ये महसूस होने लगा है ना कि स्कूल खुलने में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, जिस तरह की प्रिपरेशंस कतर के कोने कोने में चल रही है विद बैक टू स्कूल डिस्काउंट्स, ऑफर्स, प्रमोशन, सो मेनी एक्टिविटीज, मतलब भाई आज के दौर को अगर आप देखने समझने की कोशिश करें तो जमाना कितना बदल गया है। मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अब बैक टू स्कूल ऐसा कैंपेन चलाया जाता है, मतलब उसकी अलग से तैयारी कराई जाती है। अब इस कैंपेन में कितने एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस, एक्टिविटीज। अब एक काम करते हैं, जरा फ्लैशबैक में चलते हैं एंड अपनी जिंदगी को आज के बच्चों की जिंदगी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। भैया हमारे लिए भी बैक टू स्कूल होता था, लेकिन बैक टू स्कूल कुछ इस तरह से होता था कि जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन मम्मी जो है ना सीधा रूम में आके पंखा बंद कर दी थी कि नालायक उठ, स्कूल जाना है। यार आज कितना कुछ बदल चुका है ना, मतलब आज की डेट पे जो प्रिविलेजेस लोगों की जिंदगी में है, बच्चों की लाइफ में है, शायद हमारे जमाने में हमारे दौर पे वो नहीं था, लेकिन हमें जो भी मिला ना हम उससे बहुत खुश थे। अगर मैं अपने बचपने को याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे वो कोई फेज याद नहीं है जब हर साल मुझे कोई नया बैग मिला हो या हर साल मुझे कोई नया यूनिफॉर्म मिला हो, लेकिन उसी पुराने यूनिफॉर्म को एक बार फिर से नए साल में पहन के जाना, यार एक अलग सा नयापन जो है ना मुझे तो महसूस हो ही जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात का होता था कि फाइनली घर से दूर एक बार फिर से दोस्त यारों के साथ मिलकर न जाने कितनी मस्तियां शरारतों का मौका मिलेगा। चलिए जी, बैक टू स्कूल के बहुत सारे कैंपेन्स कतर के कोने कोने में, जिसे दिल खोल कर एंजॉय करें। मिर्ची का स्पेशल कैंपेन आप तक जरूर पहुंचेगा, सारी बातें होंगी अब से कुछ देर में। मीनवाइल सुनो निगम इन महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में आप तक ये अगला गाना पहुंचा दूं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
2: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
3: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
2: जैसे
3: तो
2: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
1: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live in

0: आदित्य रखारी की खूबसूरत सी आवाज एंड साहिबा साहिब क्या बताएं यार, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले किसी का ख्याल आता है तो वो है आप।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे नेचुरल सी बात है, जब सुबह उठते ही इंसान को रेडी होकर सबसे पहले ऑफिस आना हो तो जिन लोगों से उसकी गुफ्तगू होने वाली है उसे उसका ख्याल ना आए तो फिर किसका ही आए। नेचुरल सी बात, कॉमन सेंस यू नो, जो मेरा कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं कि आपका सेंस कितना तगड़ा है, आपकी मेमोरी याददाश्त क्या कमाल है, इस बात को जरा हम पिक्चराइज एनालाइज कर ही लें। देखो यार, एक बड़ी कमाल सी बॉलीवुड की फिल्म है जिसका एक कमाल सा डायलॉग है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। एंड ये आइकॉनिक डायलॉग अगर किसी शख्स ने इस फिल्म में पे किया है तो एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस निभाया है, लेकिन एक गेस्ट के तौर पर एक ऐसा इम्पैक्ट और छाप छोड़ा ना भाई कि इनकी कही हुई बात जो है जनरेशंस तक याद करने लायक रह गई। अब ये कौन है, सारी बातें मैं बता दूंगी तो तुम क्या करोगे, फटाफट से इस शख्स को आइडेंटिफाई, इस बात को जरा हम पिक्चराइज एनालाइज कर ही लें। देखो यार, एक बड़ी कमाल सी बॉलीवुड की फिल्म है जिसका एक कमाल सा डायलॉग है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। एंड ये आइकॉनिक डायलॉग अगर किसी शख्स ने इस फिल्म में पे किया है तो एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस निभाया है, लेकिन एक गेस्ट के तौर पर एक ऐसा इम्पैक्ट और छाप छोड़ा ना भाई कि इनकी कही हुई बात जो है जनरेशंस तक याद करने लायक।

0: और ऑडियो मैसेज. सो हियर वी गो.
1: आसान है क्या दिया? ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले. It's the most beautiful feeling in the world. कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बटती. सिर्फ मेरा हाथ है इसमें, सिर्फ मेरा. मुझे सभा से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए सभा की ही जरूरत नहीं.
0: क्या बात है यार, मतलब एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है, इस पे सिर्फ मेरा हक है. क्या बात है यार, मतलब ऐसे सेल्फलेस लव की अगर कहानी को मैं सोचने की कोशिश करूं, क्या एग्जिस्ट करती है क्या? इस पे बाद में हम बातचीत करेंगे. अभी आप मुझे ये बताओ कि ये बात कही तो किस शख्स ने कही एंड साथ ही किस फिल्म में कही. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. अच्छा लगता है जब आपका जवाब आता है. हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड क्या खूबसूरत, क्या प्यारा सा गाना है यार। मतलब ये शख्स बहुत अच्छी तरह से जानता है कि गाने के साथ जस्टिस किया जाए तो कैसे किया जाए। मिर्ची अंशु। वैसे आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे साथ जस्टिस किया जाए तो कैसे किया जाए, मतलब मेरे सवालों के साथ। यार सच कह रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब मुझे ये बात एहसास बार बार होता रहता है कि भाई स्टूडियो की इस चार दीवारी के अंदर सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो बातें करती रहती हूँ, कोई और है जो मेरी बातों को सुनते हैं, मुझसे कनेक्ट करते हैं, हाँ बेसब्र बेताब होकर रिप्लाई करने की तैयारी भी करते हैं। तो बस अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच आज पेश की एक कॉन्वर्सेशन जिसका एसेंस जो है बड़ा तगड़ा था एंड आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से, इन किन दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। चलिए फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से ये कॉन्वर्सेशन जो है एक बार फिर से आप तक मैं पहुंचा ही दूं।
1: आसान है क्या दिया? ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिलना, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, रिश्तों की तरह
0: यार एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है और रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बढ़ती। देखे लोगों ने क्या कहा, ये कौन सी फिल्म से है?
2: Hi Anshu, good morning. This is Mohammed Abdul Sikandar and the scene is between Shahrukh Khan and Ranveer Kapoor and the movie name is Aye Dil Hai Mushkil. Thank you. Have a great day.
0: एब्सोल्युटली आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही है, ये बात अगर शाहरुख खान किसी के लिए कह रहे हैं तो वो है सवा यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए। क्या बात है यार। यार अपना ज़रा इस डायलॉग को अगर मैं छानने बिनने की कोशिश करूं, यार एक तरफा प्यार आज की डेट में ऐसा सोच पाना या समझ पाना बड़ा मुश्किल है यार। मुझे दो आशिकों की कहानी तो नहीं पता, माशुकों की कहानी तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा प्यार आज के डेट में भी एक रिश्ता ऐसा ज़रूर है जहाँ पे पाया जाता है एंड हमें ज़िंदा मिलता है एंड वो है माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार। चाहे बच्चे कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर दें, बच्चे कितने दूर भी क्यों ना हो जाएं, वो कॉल करें ना करें, एहसास करें ना करें, लेकिन माँ बाप का प्यार जो होता है ना भाई, ये इतना सेल्फलेस होता है कि तुम दुनिया की ज़िंदगी के किसी भी मुकाम में बस एक बार पलट के उनके पास दोबारा चले जाओ ना भाई, दिल खोल के अपना सब कुछ लुटाने के लिए तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार होते हैं। और इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। तो अगर आपके हैं, चाहे आप ज़िंदगी में कितने भी बिजी क्यों ना होना यार, रोज़ उन्हें कॉल करना, उन्हें याद करना, उनसे बात करना, ये कभी ना भूलें, इतनी दरख्वास्त है। अगर मेरी बात आपको सही लगी, सच लगी, तो मुझे एक थम्सअप तो भेज दो। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सुबोध शर्मा की आवाज में एक अगला पावर पैक ट्रैक आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: मिर्ची फ्रेश माल। लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो,
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं
1: आप? कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो,
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो 2 मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तेरा कुछ जा रहा
1: है,
3: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ों को।
1: हेलो
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah

0: रिजत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड क्या प्यारा सा खूबसूरत सा गाना यार।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: यार कभी गौर किया है कि मोहब्बत के सबसे खूबसूरत लफ्ज शायद मुझे तुमसे प्यार है या आई लव यू ये नहीं होता। कभी कभी बस इतना ही पूछ लेना कि तुम ठीक तो हो ना उससे कई ज्यादा कह जाता है। क्योंकि यार बात इतनी है कि अगर हम केयर की बात करें, फिक्र की बात करें, तो एक ऐसे जज्बात हैं जो कभी शोर नहीं करते। वो बस खामोशी से आपकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेते हैं। कभी वक्त पर एक फोन बनकर, तो कभी बिना वजह बस एक मैसेज बनकर, और कभी सिर्फ एक छोटा सा सवाल, खैरियत? तुमसे इश्क है ये कहना जरूरी तो नहीं, तुम्हारी फिक्र है बस इतना काफी है। हर रोज मुलाकात हो ये मुमकिन भी तो नहीं, बस तुम खुश रहो मेरे लिए इतना काफी है। यार रिश्ते जो है ना ये लफ्जों के मोहताज नहीं होते। कुछ अपने बस खैरियत पूछने से आपकी जिंदगी की पहचान बन जाते हैं, और इसीलिए शायद इतना खूबसूरत सा ये शब्द आपकी जिंदगी में इतना बड़ा पैगाम लेकर आता है कि प्यार की सबसे पहली पहचान होती है किसी की फिक्र होना, किसी की खैरियत का एहसास होना। तो अगर आपको ये लगी बात अच्छी तो एक थैंक यू मैसेज तो बनता है। 5000 1896 I'm eagerly waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। Meanwhile, मिट्राज की प्यारी से आवाज़ यानी अगला गाना from the film तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: अलका याग्निक एंड कुमार सानू की एक खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म इश्क विश्क प्यार व्यार। सच कहूँ ये वही गाना है एंड वही स्टार कास्ट है भाई, जिन्हें देख कर कहीं ना कहीं इश्क प्यार मोहब्बत जो है ना हमें ज़रूर हो ही गई थी।
1: मिर्ची अंशु
0: यार पता है, जब मैंने इस फिल्म में शाहिद कपूर एंड अमृता राव को एक साथ देखा था ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि रियल लाइफ में इन दोनों की शादी जो है ना 101% हो ही जानी चाहिए। वैसे ये फीलिंग तो मुझे अक्सर शाहरुख खान एंड काजल को देखकर भी लगती थी, यार इनकी शादी जो है ना 101% हो ही जानी चाहिए। हैविंग सेड दैट, इनकी शादी हो या ना हो, लेकिन हम जो है शादी में बनने वाले उस पकवान को इस वक्त जरूर याद करेंगे। एब्सोल्युटली, अब आपके बीच पेश करने वाली हूँ मैं एक पहेली जो किसी ना किसी डिश की कहानी बयां कर रही है। आपको ध्यान से सुनना है, गौर फरमाना है, बस मुझे ये बताना है कि ये डिश, ये खाने का आइटम है तो है कौन सा। एंड आई एम प्रीटी श्योर अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका ये पक्का वाला फेवरेट है। एंड अगर आपको लगे कि आपने सही जवाब पहचान लिया तो फटाफट से करेक्ट आंसर भेजना 5000 1896 पर, 5000 1896 पर, विल गेट कनेक्टेड। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, जरा ध्यान से सुने। नाम में फूल है, नाम में फूल पर फूल नहीं, रंग है काला पर कोयला नहीं, चाशनी में डूबकर दिल जीत लेता हूं, बताओ मैं कौन जो एक पर कभी रुकता नहीं। मतलब अगर ये आपके सामने आए तो ये बात तो समझ जाओ कि एक पर आप जो है वो रुक नहीं सकते। इसके नाम में कोई तो फूल है लेकिन ये फूल नहीं, रंग में काला है पर ये कोयला नहीं, चाशनी में डूबकर दिल ये आपका जीत लेता है, जरा बताओ ये कौन है जो एक पे कभी रुकता नहीं। 5000 1896 eagerly waiting for your messages. Meanwhile, श्रेया घोषाल की आवाज अरमान मलिक का साथ एंड ये अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है। मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन वरदाना के पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
3: ये क्या सवाल है?
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
5: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: भाई साहब क्या पावर पैक गाना दैट जस्ट कीप्स ऑन टेलिंग अस रिमाइंडिंग अस टाइम एंड अगेन लेट द म्यूजिक प्ले हबीबी
1: मिर्ची अंशु
0: आए गजब का माहौल हो अच्छा खासा म्यूजिक हो एंड साथ में गर्मा गर्म रखी सामने इसकी प्लेट हो सच कह रही हूँ खाना खाने के बाद जो पूर्ण अनुभव आभास जो है ना वो हो ही जाता है मतलब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की एक पहेली जिसमें खाने की डिश का नाम छुपा था आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है कौन सी डिश एंड पहेली थी नाम में फूल पर ये फूल नहीं रंग है काला पर कोयला नहीं चाशनी में डूब कर दिल जीत लेता है बताओ है ये कौन जो कभी कोई एक पर रुकता नहीं
2: हेलो मैडम गुड आफ्टरनून आप जो बोली है ना डिश मुझे लग रहा है गुलाब जामुन
3: मेरा नाम अकील है और या आपने जो आंसर पूछा था उसका नाम है गुलाब जामुन
0: वेल एब्सोल्युटली आप दोनों ने जो कहा ये पूरी तरह से सही जितने लोगों ने लिखकर भी जवाब दिया वो 101% करेक्ट थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिप्लाइज वी रियली रियली अप्रिशिएट इट बिल्कुल अगर इसके नाम को देखने की कोशिश करें तो ये है गुलाब जामुन वैसे एक बात सोचें कि भाई गुलाब जामुन ये नाम आया कैसे ना ही इसमें गुलाब है ना ही इसमें जामुन है वेल गुलाब इसलिए क्योंकि चाशनी में जो रोज सिरप डलता है वहां से आया गुलाब जामुन इसलिए जो हमारा फ्रूट है जामुन उसके शेप एंड रंग की जैसे कहीं ना कहीं मिलता है इसलिए आए गुलाब जामुन बढ़िया है जी चलिए इसकी कहानी तो मैंने आपको बता दी अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे कतर में एक अच्छा गुलाब जामुन खाना है जो एक तो नहीं होगा ज्यादा ही होगा तो उसके लिए मैं जाऊं तो जाऊं कहां प्लीज आई एम रियली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड आई एम रियली क्रेविंग फॉर सम गुलाब जामुन टुडे 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु चलिए एक घंटे के उस पार आपसे मुलाकात करते हैं एंजॉय बंदी का

Well, संशु राठौर की खूबसूरत सी आवाज है, व्हाट अ लवली पावर पैक ट्रैक इट इज. इसका मराठी वर्जन जितना खूबसूरत था भाई, कितने सोचा था, किसने सोचा था इनफैक्ट कि जब ये गाना हिंदी वर्जन में आएगा तो उतना ही हाय आग लगाएगा. मिर्ची अंशु यार, मतलब सच कह रही हूँ, तुम्हारी वाली साड़ी में जितना आग लगाती है ना, इस गाने ने बिल्कुल बस उतना ही आग लगाया संजू राठौड़ की आवाज़ में. चलिए जी, पता है साड़ी की अगर मैं बात करूँ, कपड़ों की बात करूँ या ट्रेंड्स की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दौर हम पीछे छोड़ आए, एक बार फिर से वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है. अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसे समझाने की कोशिश करती हूँ. आप देखिए, अगर मैं आज से 10-15 साल पहले के ट्रेडिशन की बात करूँ, तो आपको याद है उस समय अगर कुछ चलता था बहुत ज़्यादा फेमस था, सो दैट वाज बेल बॉटम, या तो फिर वो लूज पैंट्स जिसे हम बेल बॉटम कहा करते थे, एंड फिल्मों में, यू नो, हमारी डेली लाइफ स्टाइल में इट वॉज ट्रेंडिंग. उसके बाद अचानक से एक दौर आया जब सब कुछ एकदम स्किनी हो गया ना, लोग हो ना हो, लेकिन हाँ, स्किनी कपड़े जो है वो 101% काफ़ी फेमस हो गए. हर किसी को वो फटी चथड़ी, यू नो, वो स्किनी जीन्स पहननी है. लेकिन आज की डेट में एक बार आप फिर से देखने की कोशिश करोगे, अगर कोई ट्रेंड प्रेवलेंट है, सो दैट इज ऑफ बैगी पैंट्स. मतलब टर्म बदल गया है, लेकिन फिर से वो पुराना ट्रेडिशन, पुराना कल्चर जो है हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है. इनफैक्ट साड़ियों की अगर मैं बात करूं, तो अब से कुछ समय पहले तक मिलेनियल्स जो है ना, साड़ी से काफ़ी दूर हो चुके थे. उन्हें लगता था कि भाई ओ साड़ीज एंड ऑल, नहीं यार, हम जो एक पर्टिकुलर स्टाइल के कपड़ों में फिट है. नहीं, कईयों के लिए साड़ी बहुत ज़्यादा क्रेज का फैक्टर हमेशा रहा है, बट एक पर्टिकुलर जनरेशन जो है या लोग हैं, सेक्टर जो है, वो साड़ी से हट गया था. आज की डेट में जेंजीज को आप देखें भाई, साड़ी अगर उनके लिए कुछ है, सो इट इज़ अ फैशन स्टेटमेंट. कुल मिलाकर कुछ चीज़ें जो सदा बाहर रही है ना, हो सकता है पल भर के लिए वो कहीं पीछे छुप जाएं, लेकिन फिर से उभर कर लौट कर वो वहीं आती हैं. चलिए आपसे मैं एक पूछने की कोशिश करूंगी कि कपड़ों का ऐसा कोई ट्रेंड है, चाहे मेंस वेयर में हो, आई मीन आई वुड डेफिनेटली स्पीक मच अबाउट विमेंस वेयर, मेंस वेयर में ऐसा कुछ ट्रेडिशन या कल्चर है जो अब से कुछ सालों पहले काफ़ी प्रेवलेंट था, बीच में गायब हो गया, लेकिन इन दिनों आपको वापस देखने में मिल रहा है. 5000 1896 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल उदित नारायण की आवाज़, अलका याग्निक का साथ, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म गदर. एन्जॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
3: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
3: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
4: हाँ बताइए
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
4: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
4: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
3: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: जा कहां रहा है
4: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
4: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
3: यार क्या बात कर रहा
4: हूं मतलब नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
3: चल
4: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
3: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
4: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स पावर दैट सेव्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप घर बैठे चाहिए नया कार्ड स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स लेट मत करो ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे टीएनसी अप्लाई
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इजंट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
9: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live.

बस सुनने कम की आवाज कविता कृष्ण मूर्ति का साथ एंड व्हाट अ लवली डेडली ट्रैक इट इज यार आर माधवन दिया मिर्जा. एक स्क्रीन में इतनी खूबसूरती एक साथ कैसे हो सकती है. एंड इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन की बात करूं भाई चुम्मा म्यूजिक अगर किसी ने कंपोज किया है तो वो है हरीश जयराज. मिर्ची अंशु भाई सच कह रही हूँ. थिएटर में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी शायद अपने आगाज में इसने इतना कमाल नहीं मचाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 6 साल तक बैक टू बैक रीप्लेस में टेलीविजन में जो कोहराम एंड तहलका इसने मचाया ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड अभी जब मैं आर माधवन से मिली, आई वाज इन चेन्नई व्हेन आई हैपेंड टू मीट आर माधवन, वॉच हिम अप वेरी क्लोज एंड लिसन टू हिज वंडरफुल थॉट्स. व्हाट अ मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी ही इज ऑनेस्टली मैन. मतलब यार आर माधवन में जो वो मैडी वाला चार्म है ना, वो उनकी स्लाइट सी हल्की वाली स्माइल आज भी पूरी तरह से बरकरार है. वैसे सच कहूं मेरा दिल जो है ना मैडी के प्यार से जितना भरा हुआ है, आज के एक्सचेंज रेट को देखकर दिल खुशी से भी उतना ही भरा हुआ है. वही दौर जिंदगी में आ चुका है जब मैं एक्सचेंज रेट से मिन्नतें करने लगती हूँ कि भैया महीना आधा निकल चुका है, आधा बस पार होने वाला है, प्लीज अब आगे बढ़ना पलट के देखने की कोशिश ना करना. और तुम भी हैविंग सेड दैट, अगर आज ट्रांसफर करना चाहोगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट इंडियन रुपीज 26.18, पाकिस्तानी रुपीज की बात करूँ 76.18, लंगन रुपीज मचाते हुए डंका 91.16, नेपाली रुपीज 41.86 एंड बांग्लादेशी टका 33.66. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट बेबी, एंजॉय.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah.

0: जब तक एक जुड़ी धनिये के साथ हम दो मिर्ची मुफ्त में ना लाएं, तब तक धनिये लाने की खुशी हो तो कैसे हो।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: देखो यार, बात इतनी है कि ये जो ह्यूमन माइंड है ना, ये बड़ा कमाल है। आप और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम शॉपिंग पे निकलते हैं तो जो सामान खरीदने गए थे उसे खरीदने की खुशी उतनी नहीं होती जितनी कि उसके साथ मिले हुए मुफ्त में किसी दूसरे आइटम की होती है। इनफैक्ट मेरे घर वाले तो बड़े कमाल थे। एक बार एक दुकान गए जूता खरीदने के लिए। भाई साहब, मेरी दादी ने दुकानदार से कहा, भैया जूते तो मैंने ले लिए, अब एक काम करे, सॉक्स जो है आप जरा मुफ्त में दे दें। पर इतना बता दूं, अगर आपके अंदर भी ये कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट वाला कीड़ा है तो आपकी जिंदगी में सैटिस्फेक्शन जो है अब चरम परम सीमा में आने ही वाला है। वाल अगर आप एक स्पोर्ट एंथुसियास्ट हैं जो बहुत सारे मैचेस, एंटरटेनिंग इवेंट्स देखने जाते हैं, तो इतना समझ जाएं, कतर ने लॉन्च किया है अपना नया स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हयो, HAYYOH। एंड इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप कोई की काम करना है, जो भी कोई एलिजिबल स्पोर्टिंग इवेंट है उसके टिकट्स खरीदना है, परचेज करना है, अटेंड करना है। एंड अगर आप ऐसा करते हैं, इन दैट केस आप पॉइंट्स अर्न करेंगे एंड मेंबरशिप टियर में आप ग्रेजुअली ऊपर बढ़ते जाएंगे एंड फिर उन पॉइंट्स को आप रिडीम भी कर सकते हैं, बिल्कुल, जिसके चलते आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स एंड एक्सपीरियंसेस जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जरिए। बढ़िया है जी, मतलब एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ में अब पॉइंट वाला सिस्टम यहां पर भी आ गया है। तो भैया आप और हम अगला मैच देखने तो अब जरूर जा रहे हैं, ये बात तो तय हो गई। रजिस्ट्रेशन जो है कतर के रेसिडेंट्स एंड सिटीजंस के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो जाइए हयो प्लेटफॉर्म को अपने फोन पर शामिल कर ही लीजिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इट्स ऑल डाउन एंड डन इजंट इट, 4 balls left, they need 12 runs to win।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: की पावर पैक आवाज, बड़ा लवली ट्रैक रिस्ट फ्रॉम द फिल्म एक लड़की को देखा। लेकिन यार इस गाने की बात करें तो भाई ये 90s से हमको रिलेट ना करे तो फिर किससे ही करे।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक। हाँ जी, बात करते करते ये सफ़र जो है मुझे कब मेरे खाने की प्लेट तक ले आया मुझे पता ही नहीं चला। नहीं वैसे मैंने ऐसा सुना है कि जब आप बात ज़्यादा करते हो तो आपको भूख बहुत लगती है, लेकिन मेरे साथ तो बात ये है कि जब मुझे भूख बहुत लगती है ना तो मैं बातें और ज़्यादा करने लगती हूँ। दोनों जो है मेरी लाइफ में इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड है। वैसे 1 बजे की ओर जब घड़ी का कांटा इशारा करने लगे तो बात होती है स्पेसिफिकली मेरे साथ अक्सर हर दिन खाने की। एंड यार मेरे लिए ना फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट जस्ट बिकॉज आई एंजॉय ईटिंग गुड फूड बट ऑल्सो बिकॉज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो भैया अच्छा खाना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको एक बात बताती हूँ। यूजुअली ना हम जो है ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं जो इंस्टेंट फिलिंग हो या बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस हो, हर किसी को जुबान में स्वाद अच्छा है इसकी तलब तो होती है। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगी, अगर अपने डाइटरी पोर्शंस को आप देखने की कोशिश करेंगे ना तो ये 4 चीज़ हमेशा अपने खाने पर शामिल करना। सबसे पहली बात मैं कहूँगी फाइबर्स की सैलड जो है उससे अपने मील्स की शुरुआत करें। सेकेंड जो है जिंदगी में अगर कुछ शामिल करना है तो वो है हेल्दी फैट्स के साथ बहुत सारा प्रोटीन। एब्सोल्युटली प्रोटीन इंडीड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। बचपन में सिर्फ ये आंसर रट्टा मारने के लिए नहीं रटा था, इट इज इंडीड वेरी वेरी ट्रू। लास्ट ऑप्शन अगर कुछ होना चाहिए सो दैट शुड बी ऑफ कार्ब्स। कार्ब्स सबसे आखिरी में आते हैं तो ये सीक्वेंस ये सीरीज फॉलो करें, उसके बाद देखें शरीर का हर एक पुर्जा जो है ना, हर एक सिस्टम जब सही तरह से काम करेगा तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली वो तजो तारा वाली फीलिंग जो है ना आप हर दिन महसूस करते रहेंगे। एंड बाद में मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना, और अगर हाँ एंड जो है ना हमेशा एक मिठास के साथ करना। नहीं अंशु जो अब दिन भर तो नहीं होती है ना, तो एक मीठा छोटा सा डेट हो गया, गुड़ हो गया, ज़रूर मस्ट है मैंडेट। जुबिन नौटियाल की आवाज़। जाने से पहले प्यारा सा गाना सुनाती चलती हूँ। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल ऑल स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, मसलामा हबीबी।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, की 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet vala burka. Milci, burka.
1: Milci.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ.
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा.
2: तो मैं अभी बता दूँ.
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
2: संजना.
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का.
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा.
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं.
1: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में. जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताऊं.
1: ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. मैं रेडियो मिर्च पे.
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी. इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सब के सब. तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट. अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार. तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

फ्लेक्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधू टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता क्या चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: कर आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय जुनून
4: अपनी आंखों में खुद ही खो जाती सिवाय सिवाय किसके
5: जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक के दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाईज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी. एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट. और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं. और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑ ऑफ हर. और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी. काफी शोज आए काफी शोज गए लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nayi scheme hai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मेरा आपका वो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
2: कुकड़ो को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: ये पटाक।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि यू नो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से हैं। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाए।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, she is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking, mama।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s kids के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT platforms नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास used to be एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यों की सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vidva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है या लाइन में आ रहा हूँ? तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक।
5: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
6: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट.
2: यादों को चिट्ठी.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के. हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ. वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है. मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी. तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था. बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार. आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास. तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: काउंटडाउन शोज में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो एट दैट टाइम दिस वाज जस्ट अ मेलोडी फॉर अस। किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा।
2: मिर्ची 90s का सेट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना,
3: तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा,
1: व्हाट अ मेलोडियस ट्रैक यार। लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था। लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा। And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदायी हो जाता है यार। खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ। बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना। जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4। मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अरे यार, इस मौसम से भी तो कोई प्यार करो। बात करो मैं इस ह्यूमिड वेदर की, जिसने हम सब की जिंदगी में एक अलग सा भूचाल मचा रखा है। मतलब हमें तो लगता है कि हम समंदर बन जाएंगे, इतना पसीना निकल रहा है जैसे ही बाहर निकल रहे। वेल, जब तक एसी की हवा में सब कुछ भला चंगा, और जैसे ही बाहर निकले पानी की गंगा। कुल मिलाकर जबरदस्त ह्यूमिडिटी हमारे कतर को अब घेर चुकी है। और यही कहना चाहता हूं कि हमने ये तो सुना है कि लोग समर्स में दे फील बेटर, इन विंटर्स दे फील बेटर, लेकिन आई रियली डू लव दिस ह्यूमिड वेदर, नो वन सेड एवर। तो भाई बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो मौसम आ गया है जिसको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अगले 2 महीनों तक अब इस मौसम को झेलने की हमें तैयारी करनी है। 89.6 मिर्च जीवन पर अपने इस बदली आवाज के साथ आ गया मस्तमौला गौरव, क्योंकि आपको पता है जब मौसम बदलता है तो सबसे पहला असर गले पे ही तो होता है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci.
1: I z kabana, po z kabana, sa kabana. Rabana. Burka, burka. Na pierdwala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल,
2: से,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: मतलब नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप यही नहीं गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे TNC supply.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीडी स्नूनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: पतंग तो बहुत उड़ाई है मैंने बचपन में, लेकिन अब ड्रोन उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मस्त मौला गौरव। अगर ये सवाल आपके भी मन में आता है कि अगर कतर में अभी भी हमें ड्रोन को फ्लाई कराना है तो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आ रही है।
1: #974 the most trending local news of the day.
0: Yes, मैं आपको बताता हूँ, कतर की सिविल एविएशन अथॉरिटी एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी सेशन लेकर आ रही है, और ये सेशन उन लोगों के लिए है जो ड्रोन के लाइसेंस को लेकर कतर में ड्रोन फ्लाई करना चाहते हैं। उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट सेशन रखा जा रहा है, जिसे न्यू ड्रोन लॉ नंबर 10 ऑफ 2026 के साथ बहुत सारी चीजों में बताया जाएगा कि नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन को कैसे सेफली और लीगली हमारे कतर में फ्लाई कराना है। वेल, 19th ऑफ अगस्त यानी कि आने वाली 19 तारीख को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कतर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में ये होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पूरा सेशन अरबिक लैंग्वेज में होगा और इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जितनी जल्दी हो सके जाइए एंड कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर आपको ये पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगी, वहां जाकर रजिस्टर कर लीजिए एंड क्या पता आपको मौका मिल जाए, आप वहां जाओ और अगर अरबिक लैंग्वेज में आप कुछ भी समझ पाओ तो ये शायद फायदे का सौदा होगा। सबसे पहले चीजें आपको पता लगेंगी, तो अपनी भाषा की इस पकड़ का मजबूती से फायदा उठाइए एंड अरबिक में होने वाला ये इंट्रोडक्टरी सेशन जहां पर ड्रोन को कैसे नए कानून के तहत कतर में उड़ाना है इसके बारे में जान जाइए। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट। वैसे पतंगे तो हम काट के पेचे लड़ा के कहते थे भाग कटे, लेकिन ड्रोन को कोई काट नहीं पाएगा। मिर्ची इट्स हॉट।

भाई घबराहट तो मेरे मन में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये हमारे दिमाग को इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकती है स्वानिशा? मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि इतना अच्छे से पढ़ ले रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो गई है, मैं इनके सामने आऊंगा ही नहीं। 89.6 मिर्ची 1 पर बात करो दी मेंटल स्वानिशा लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे। यस सुहानी 25 सितंबर को हमारे कतर आ रही है। ये वो मेंटलिस्ट है जिन्होंने दुनिया भर में अपना डंका बजा रखा है और अब हमारे कतर में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है। टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहां भी जाइए आपको ये टिकट्स मिल जाएंगी। ये सिटी पर फिलहाल ये आपको अर्ली बर्ड ऑफर के साथ मिल रही है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि सुहानी शाह वो छोटी सी बच्ची जिसने 7 साल की एज में स्टेज पर मैजिक शो करना शुरू किया और करते करते करते करते वो आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेनाउंड मेंटलिस्ट बन गई हैं। और वो हमारे कतर हमारा दिमाग पढ़ने आ रही है। सलमान खान का पढ़ चुकी है, आमिर खान का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, केविन पीटरसन का, नामों की लिस्ट लंबी है। रवि शास्त्री भी खुद परेशान हो गए और कदम छू दिए लोगों ने इनके, अनु मलिक जैसे, कि भैया कैसे कर लेती हो। अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है एंड विश्वास कीजिए बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स जो हमारे साथ मिलकर आए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। यस डेयरी क्वीन, पापा जॉन्स, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहैब मीडिया एंड पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स एंड मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वायर, टिकटिंग पार्टनर एस सिटी स्नूनू जहां पर अभी ये टिकट्स मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, गो एंड बुक योर टिकट्स क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ में इससे पहले आपने कभी नहीं लिया है। ले लो, कहोगे मस्त मौला गौरव कमाल की चीज बता दी तुमने, मिर्ची इट्स हॉट।

0: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मैं बताऊं मेरे ख्वाबों में आजकल क्या आता है? मेरे ख्वाबों में आता है जैसे ही मैं गाड़ी में अपनी बैठूंगा पसीने छूट जाएंगे क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। देखिए आज दिन का मैक्सिमम तापमान पहुंचेगा तो 41 डिग्री पर, लेकिन इसकी रियल वाली फीलिंग कितने डिग्री की है मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। बस ये समझ लो भयंकर वाली गर्मी देगा, 44 वाली फीलिंग कराएगा। एंड इसका रीजन है ह्यूमिडिटी का पारा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना। यस, लगभग 50% के आसपास ये आज पूरे दिन में घूमेगी। एंड इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। ये हमारे शरीर से जितना पानी निकल रहा है हमें उतना ही पानी अपने अंदर लिए रखना है। उसके लिए लगातार बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए। हवाओं से आज बिल्कुल कुछ उम्मीद मत कीजिए। आज एसी की हवा खाइए, अपने ऑफिस का एक कोना ढूंढ लीजिए और बॉस को लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम करते दिखाई देते रहिए। उसे लगेगा बेचारा मेहनत कर रहा है। 89.6 मिर्ची 1, ये हमारे आपके बीच का सीक्रेट है। बॉस को नहीं बताना। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
3: But I remember one such party जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
2: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट
1: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स पावर दैट सेव्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कारमेल ग्रुप

ये आवाज भूले तो नहीं ना बच्चों, अब भूलना भी नहीं क्योंकि अब इसके दिन पास आ गए 89.6 मिर्ची 1 पर। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही सुकून भरे पल आने वाले क्योंकि एक बार बच्चे स्कूल गए, रिमोट पे अपना कब्जा और घर में मम्मियों को मिलेगा मी टाइम। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्तमौला गौरव बात कर रहा है उस बैक टू स्कूल कैंपेन की जो 2026-27 सीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है। भाई अब फाइनली घर पे थोड़ा समय तो पेरेंट्स को शांति के साथ टीवी पर अपने कब्जे के रूप में मिलेगा, वहीं बच्चों के लिए इमोशनल मोमेंट है वो अभी तक थोड़ी देर और सोने दो। और मम्मी पापा कहते थे ठीक है छोड़ो ना वेकेशन ही चल रहे हैं, लेकिन बच्चों अब बैक टू स्कूल आ गया है यानी कि कंधे पर बस्तों का बोझ होगा, स्कूल में पढ़ाई का लोड और शाम को लौटते ही दोस्तों से थोड़ी देर मस्ती के बाद फिर अगले दिन स्कूल जाने की होड़। तो तैयार हो जाओ, आपके लिए आपके बेस्ट डेज आर कमिंग एंड ट्रस्ट मी आज आपको भले ही ये लोड लगता है बच्चों, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने आज से कई साल पहले स्कूल जाना छोड़ दिया, आज मौका मिले तो वो फिर चले जाएं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga. La vie va la Burga. Milci, Burga.
2: Milci?
3: It's Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताऊं।
2: ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
2: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्च पे।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पजल।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

भाई घबराहट तो मेरे मन में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये हमारे दिमाग को इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकती है स्वानिशा? मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि इतना अच्छे से पढ़ ले रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो गई है, मैं इनके सामने आऊंगा ही नहीं। 89.6 मिर्ची 1 पर बात करो दी मेंटल स्वानिशा लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे। यस सुहानी 25 सितंबर को हमारे कतर आ रही है। ये वो मेंटलिस्ट है जिन्होंने दुनिया भर में अपना डंका बजा रखा है और अब हमारे कतर में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है। टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहां भी जाइए आपको ये टिकट्स मिल जाएंगी। यस सिटी पर फिलहाल ये आपको अर्ली बर्ड ऑफर के साथ मिल रही है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि सुहानी शाह वो छोटी सी बच्ची जिसने 7 साल की एज में स्टेज पर मैजिक शो करना शुरू किया और करते करते करते करते वो आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेनाउंड मेंटलिस्ट बन गई हैं। और वो हमारे कतर हमारा दिमाग पढ़ने आ रही है। सलमान खान का पढ़ चुकी है, आमिर खान का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, केविन पीटरसन का, नामों की लिस्ट लंबी है। रवि शास्त्री भी खुद परेशान हो गए और कदम छू दिए लोगों ने इनके, अनु मलिक जैसे, कि भैया कैसे कर लेती हो। अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है एंड विश्वास कीजिए बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स जो हमारे साथ मिलकर आए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। यस डेरी क्वीन, पापा जॉन्स, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहैब मीडिया एंड पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स एंड मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, टिकटिंग पार्टनर एस सिटी स्नूनू जहां पर अभी ये टिकट्स मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, गो एंड बुक योर टिकट्स क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ में इससे पहले आपने कभी नहीं लिया है। ले लो, कहोगे मस्त मौला गौरव कमाल की चीज बता दी तुमने, मिर्ची इट्स हॉट।

0: अब कतर के किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में सिर्फ टीम्स नहीं जीतेंगी, प्लेयर्स नहीं जीतेंगे, आप भी जीतेंगे। हाँ भाई, अब ऐसा ही इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है हमारे कतर में।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है कि कतर ने लॉन्च कर दिया एक ब्रांड न्यू नेशनल इनिशिएटिव जिसका नाम है हाइयो। यस हाइयो, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्टेडियम जाकर मैच देखने से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देगा बल्कि आपको रिवॉर्ड्स जीतने का मौका भी देने वाला है। यस, कैसे? बड़ा ही सिंपल है। हर एलिजिबल स्पोर्टिंग इवेंट को अटेंड करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 1000 हाइयो पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप पार्टनर नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव ऑफर्स यूज कर पाएंगे। रिमेम्बर, आपने जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लिया, हाइयो में आप जैसे जैसे पॉइंट्स कमाएंगे वहां पर ढेर सारे पार्टनर्स आपको ऑफर देंगे और उनमें से जो भी चाहो आप उस एक्सपीरियंस को रिडीम कर सकते हो। एंड बड़ी बात यह है कि इसमें जितना ज्यादा स्पोर्टिंग इवेंट जाकर आप देखोगे उतना लेवल आपका बढ़ता जाएगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और टीयर्स के साथ प्रोग्रेस, मोर ऑफर्स, मोर बेनिफिट। और सबसे खास बात, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। एंड दिस इज फॉर ऑल द पीपल, यानी कि कतरी सिटीजंस एंड कतर के सारे रेसिडेंट्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब स्टेडियम जाने के लिए बहाना ढूंढेंगे हम कि अरे भाई चले जाते ना, एक मैच देख ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके साथ बहुत सारे और बेनिफिट एंड ऑफर्स मिलने वाले। 89.6 मिर्ची 1 पर थैंक यू टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, थैंक यू टू द एडमिन जिन्होंने इस बारे में सोचा और हम एज अ फैन भी कुछ जीते इसका ध्यान दिया। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नंदीश संधु टीवी एक्टर,
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
4: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून के। आंखों में खुली हो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के।
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

अरिजीत सिंह, निकिता गांधी, जोश से भरपूर ये गाना किसने सुनाया? लेकिन एक चीज जो मैं रोज सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाता है, लेकिन मैं 15 तारीख के बाद ये सुन के थोड़ा उदास रहता हूँ। काश मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, घर भेजू कैसा। वंस अगेन अ वेरी गुड रेट इंडियन रुपीज की अगर बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले 26 रुपए 18 पैसे अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 26.18 INR। बताइए इतने अच्छे रेट में थोड़े पैसे होते घर भेज देते। इन सब के बीच एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 91.16। वहीं जनाब पाकिस्तान रुपीज की बात करें, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.18 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाल रुपीज का रेट छ आज 41.86 का भलचा रेट है भाई। हाँ जी 41.86 को नेपाल रुपीज का रेट छ आज। अगर आप घर भेजने लाई तो सही टाइम छो दाई, अगर घर भेजना भेजो। एंड इसके बाद बंधु बांग्लादेश टका एकटा कतरी रियाल के बदले 33.66 तो 33.66 आइटर रेट आ जाए तो बांग्लादेश टका चिके तो मस्त मोलो गौरव के साथ। ये था मिर्ची पर आईपी एक्सचेंज रेट, मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौल गौरव के साथ।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. It's hot.
1: Driven by Shackman Trucks. जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. Shackman हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स. पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कारमेल ग्रुप.

0: फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उरुग्वे वर्सेस घाना का मैच याद आ रहा है मुझे, क्योंकि इस मैच को ना मैंने 2 दिसंबर के दिन अल जनूब स्टेडियम में देखा था। मेरा पहला एक्सपीरियंस फीफा वर्ल्ड कप में इसी मैच के साथ हुआ और मैं इतना ही कहूंगा कि अब वहां पर कुछ नया होने जा रहा है। Yes, अल जनूब स्टेडियम अब नई इबारत लिख रहा है। अब वहाँ 27 अगस्त को ऑफिशियली ओपन होने जा रहा है बास्केटबॉल का अरीना, और अल जनूब अरीना में हम देखेंगे कतर एंड चाइना का मैच। यस, हम आपको बता दें फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हमारे कतर के लिए एक और बड़ी कामयाबी जो कि 2027 में होने जा रही है। ये तैयारियां एक तरह से प्री ट्रायल होंगे एंड फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के लिए ही कतर अब चाइना से फोर्थ विंडो के तहत जो कि एशियन क्वालिफायर्स है, एंड आई एम श्योर एक शानदार बास्केटबॉल मैच देखने को मिलेगा। इस गेम को समझने के लिए भी हमारे पास मौका है एंड फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 भी मिडिल ईस्ट रीजन में, यस अरब कंट्रीज में हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में हुआ, पहला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा, यानी कि एक और हिस्ट्री कतर लिखने जा रहा है। एंड सिंगल सिटी दोहा विल बी होस्टिंग ऑल द मैचेस ऑफ फीबा, यानी कि बास्केटबॉल के सारे वर्ल्ड कप मैचेस दोहा में होंगे। ऑल सेट गाइज, एक और ऐतिहासिक टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाइए। अगले साल बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे जब फीबा का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हमारे यहाँ कतर में होगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट। अरे टिकट बुक कर लो चाइना मैच वाली, हम बास्केटबॉल में भी चीयर करेंगे।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

أشهد أن لا

कैसा हो कि आपकी शादी हो जाए, उसके बाद आप बीवी से दूर किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं और वहां फिर आपकी कोई नई गर्लफ्रेंड बन जाए। आप यही कह रहे हैं कि ये सब फिल्मों में होता है। हाँ, तो हो रहा है ना, फिल्में देखना है ना, है जवानी तो इश्क होना है, क्योंकि जस की लाइफ में ऐसा ही हुआ है। जस की पहले शादी होती है, बीवी से थोड़ी टकरार होती है, इस बीच जस जो है फॉरेन चला जाता है और बीवी ये सोच कर रह जाती कि चलो भाई वो फॉरेन चला गया है, लेकिन समय का पाला ऐसा बदलता है कि जस जो फॉरेन जाने के बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड बना लेता है, उसकी पुरानी बीवी वहां पहुंच जाती है और फिर क्या, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन के चक्कर में झूठ पे झूठ। लेकिन जस पकड़ा कैसे जाएगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको Z5 का सब्सक्रिप्शन अभी लेना होगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रीम कर रही है ये दो लव स्टोरी वाली एक ही कहानी, जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन, पूजा हेगड़े एंड मृणाल ठाकुर, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है जब बात वरुण धवन की आती है तो एंटरटेनर इस सदी के तो यही है, क्योंकि गोविंदा से बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। 89.6 मिर्ची 1 Z5 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस फिल्म को अभी स्ट्रीम कीजिए। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Navid bala burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहा है या लोन के
3: पहले? सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: I'm sorry, नवे, I'm sorry.
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कोकड़ो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

सर अब मोबिलिटी के नए दौर में आ रहा है। यस एंड ओवरऑल कतर एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर अगर बात करें तो फ्यूचर ऑलरेडी अभी से आ गया, ऐसी फीलिंग आने लगी है। कतर का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वहां पर एक नए एरा में एंट्री की बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। नेशनल विजन 2030 को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे काम तेजी से किए जा रहे हैं और अब ऑटोनोमस मोबिलिटी यानी कि बिना ड्राइवर वाले व्हीकल्स जो हैं वो बहुत तेजी से सड़कों पर आपको दिखाई देने वाले हैं। और हमारे कतर की ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नेशनल विजन 2030 को जिस तरह से ध्यान में रखते हुए सुपर फास्ट मोड में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब आप टैक्सी बुक करेंगे और इलेक्ट्रिक रोबोट टैक्सी आपके दरवाजे खड़ी होगी। इसका फर्स्ट फेज जो अगस्त 2025 में शुरू हुआ था उसे करवा ने अपने एप्लीकेशन के थ्रू पायलट कमर्शियल सर्विस में लगभग 2500 ट्रिप पूरी करते हुए एक अच्छी फीलिंग तो दे दी थी कि ऐसा होने वाला है। इन सब के बीच अब सोचिए आने वाले टाइम में ये इको फ्रेंडली राइड्स विदाउट एनी ड्राइवर हैसल फ्री तरीके से आपको अगर मिले तो अपने आप में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी में देखा गया सीन ही तो लगेगा। इन सब के बीच मवानी कतर ने भी कमर्शियल पोर्ट्स पर कतर में स्ट्रांग कार्गो एक्टिविटी देखी है, जो एक मुल्क के तरक्की का एक और नया पैमाना भी बताती है कि कतर को एज अ कार्गो हब भी दुनिया में देखा जा रहा है। एंड आने वाले टाइम में यहां भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम में आप अभी जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर मोबिलिटी को देखते हैं ना, वो और स्पीड अप होने वाला है, वो और नए टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजिया वाली फीलिंग देने वाला है। एंड इसके लिए थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे कतर को मेहनत के साथ हर दिन और बेहतरीन तरीके से तेज तर्रार बना रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जस्ट ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस्ट को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

भाई घबराहट तो मेरे मन में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये हमारे दिमाग को इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकती है स्वानिशा? मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि इतना अच्छे से पढ़ ले रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो गई है, मैं इनके सामने आऊंगा ही नहीं। 89.6 मिर्ची 1 पर बात करो द मेंटलिस्ट स्वानिशा लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे। यस सुहानी 25 सितंबर को हमारे कतर आ रही है। ये वो मेंटलिस्ट है जिन्होंने दुनिया भर में अपना डंका बजा रखा है और अब हमारे कतर में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है। टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहां भी जाइए आपको ये टिकट्स मिल जाएंगी। ये सिटी पर फिलहाल ये आपको अर्ली बर्ड ऑफर के साथ मिल रही है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि सुहानी शाह वो छोटी सी बच्ची जिसने 7 साल की एज में स्टेज पर मैजिक शो करना शुरू किया और करते करते करते करते वो आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेनाउंड मेंटलिस्ट बन गई हैं। और वो हमारे कतर हमारा दिमाग पढ़ने आ रही है। सलमान खान का पढ़ चुकी है, आमिर खान का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, केविन पीटरसन का, नामों की लिस्ट लंबी है। रवि शास्त्री भी खुद परेशान हो गए और कदम छू दिए लोगों ने इनके, अनु मलिक जैसे, कि भैया कैसे कर लेती हो। अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है एंड विश्वास कीजिए बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स जो हमारे साथ मिलकर आए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। यस डेरी क्वीन, पापा जोन, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर Absolute Barbecue, Event Partner Cube Events, Media Partner Rehab Media and Partnered by Daiso Japan Homes R Us, Production Partner Symphony, Printing and Branding Partner Brand Arts and Marketing Partner Q Squared, Ticketing Partner S City Snoonu, जहां पर अभी ये टिकट्स मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गो एंड बुक योर टिकट्स, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ में इससे पहले आपने कभी नहीं लिया है। ले लो, कहोगे मस्त मौला गौरव, कमाल की चीज बता दी तुमने, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं पैसे चाहूंगी कि उनको नहीं आ रहे, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
4: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सलूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सलूशन है। तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking, mama।

0: सिंह भी किया पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हुआ है शाम के साथ और मस्त मौला गौरव के साथ आप बने हुए हैं दी शो शाम शानदार
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. It's hot. मिर्ची फ्रेश माल.
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: भाई घबराहट तो मेरे मन में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये हमारे दिमाग को इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकती है स्वानिशा? मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि इतना अच्छे से पढ़ ले रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो गई है। मैं इनके सामने आऊंगा ही नहीं। 89.6 मिर्ची 1 पर बात

करो द मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे। यस सुहानी 25 सितंबर को हमारे कतर आ रही हैं। ये वो मेंटलिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना डंका बजा रखा है और अब हमारे कतर में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है। टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहां भी जाइए आपको ये टिकट्स मिल जाएंगी। यस सिटी पर फिलहाल ये आपको अर्ली बर्ड ऑफर के साथ मिल रही हैं। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि सुहानी शाह वो छोटी सी बच्ची जिसने 7 साल की एज में स्टेज पर मैजिक शो करना शुरू किया और करते करते करते करते वो आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेनाउंड मेंटलिस्ट बन गई हैं। और वो हमारे कतर हमारा दिमाग पढ़ने आ रही है। सलमान खान का पढ़ चुकी है, आमिर खान का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, केविन पीटरसन का, नामों की लिस्ट लंबी है। रवि शास्त्री भी खुद परेशान हो गए और कदम छू दिए लोगों ने इनके, अनु मलिक जैसे, कि भैया कैसे कर लेती हो। अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है। एंड विश्वास कीजिए, बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स जो हमारे साथ मिलकर आए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। यस डेयरी क्वीन, पापा जॉन्स, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहैब मीडिया, एंड पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, एंड मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, टिकटिंग पार्टनर एस सिटी स्नूनू, जहां पर अभी ये टिकट्स मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गो एंड बुक योर टिकट्स, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ में इससे पहले आपने कभी नहीं लिया है। ले लो, कहोगे मस्त मौला गौरव कमाल की चीज बता दी तुमने, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
1: हेलो
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
4: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: पतंग तो बहुत उड़ाई है मैंने बचपन में, लेकिन अब ड्रोन उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये सवाल आप कभी मन में आता है कि अगर कतर में अभी भी हमें ड्रोन को फ्लाई कराना है तो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आ रही है।
1: #974
0: मैं आपको बताता हूँ, कतर की सिविल एविएशन अथॉरिटी एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी सेशन लेकर आ रही है, और ये सेशन उन लोगों के लिए है जो ड्रोन के लाइसेंस को लेकर कतर में ड्रोन फ्लाई करना चाहते हैं। उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट सेशन रखा जा रहा है, जिसे न्यू ड्रोन लॉ नंबर 10 ऑफ 2026 के साथ बहुत सारी चीजों में बताया जाएगा कि नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स को कैसे सेफली और लीगली हमारे कतर में फ्लाई कराना है। वेल 19th of August यानी कि आने वाली 19 तारीख को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कतर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में ये होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पूरा सेशन अरबिक लैंग्वेज में होगा और इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जितनी जल्दी हो सके जाइए एंड कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर आपको ये पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगी, वहां जाकर रजिस्टर कर लीजिए एंड क्या पता आपको मौका मिल जाए, आप वहां जाओ और अगर अरबिक लैंग्वेज में आप कुछ भी समझ पाओ तो ये शायद फायदे का सौदा होगा। सबसे पहले चीजें आपको पता लगेंगी, तो अपनी भाषा की इस पकड़ का मजबूती से फायदा उठाइए एंड अरबिक में होने वाला ये इंट्रोडक्टरी सेशन जहां पर ड्रोन को कैसे नए कानून के तहत कतर में उड़ाना है इसके बारे में जान जाइए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट। वैसे पतंगे तो हम काट के पेचे लड़ा के कहते थे भाग कटे, लेकिन ड्रोन को कोई काट नहीं पाएगा। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

ये आवाज भूले तो नहीं ना बच्चों, अब भूलना भी नहीं क्योंकि अब इसके दिन पास आ गए। 89.6 मिर्ची 1 पर पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही सुकून भरे पल आने वाले, क्योंकि एक बार बच्चे स्कूल गए, रिमोट पे अपना कब्जा और घर में मम्मियों को मिलेगा मी टाइम। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्तमौला गौरव बात कर रहा है उस बैक टू स्कूल कैंपेन की, जो 2026-27 सीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है। भाई अब फाइनली घर पे थोड़ा समय तो पेरेंट्स को शांति के साथ टीवी पर अपने कब्जे के रूप में मिलेगा, वहीं बच्चों के लिए इमोशनल मोमेंट है, वो अभी तक थोड़ी देर और सोने दो और मम्मी पापा कहते थे ठीक है छोड़ो ना वेकेशन ही चल रहे हैं, लेकिन बच्चों अब बैक टू स्कूल आ गया है, यानी कि कंधे पर बस्तों का बोझ होगा, स्कूल में पढ़ाई का लोड और शाम को लौटते ही दोस्तों से थोड़ी देर मस्ती के बाद फिर अगले दिन स्कूल जाने की होड़। तो तैयार हो जाओ, आपके लिए आपके बेस्ट डेज आर कमिंग एंड ट्रस्ट मी, आज आपको भले ही ये लोड लगता है बच्चों, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने आज से कई साल पहले स्कूल जाना छोड़ दिया, आज मौका मिले तो वो फिर चले जाएं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

सुहानी को तो ये बोलने ही नहीं पड़ता होगा ना कि डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, सुहानी को तो पता है अगला गाना कौन सा प्ले होगा। 89.6 बिट जीवन पर मैं हूँ आरजे मस्त मौला गौरव, बात कर रहा हूँ दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह की, जो हमारे कतर में आ रही है 25 सितंबर को। और मैं यही सोचा था कि सुहानी को कभी बोलना ही नहीं पड़ता होगा कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, क्योंकि सुहानी को ऐसे ही पता है डीजे वाला कौन सा गाना नेक्स्ट प्ले करेगा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज वो कुछ तो टैलेंट रखती हैं जिसके थ्रू वो पहचान लेती हैं सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड अब हमारे और आपके पास मौका है इसी एक्सपीरियंस को वहां सामने रहकर देखने का। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, प्रेजेंटेड बाय आईपे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन, पापा जॉन्स, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर हेल्थ मेडिकल सेंटर। इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, एंड इट्स पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, एंड मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड। एंड साथ ही साथ इस वक्त आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है, यस, प्लैटिनम लिस्ट पर एस सिटी स्नूनू पर जाइए, अपनी टिकट्स बुक कीजिए, क्योंकि सुहानी के साथ जिंदगी का एक एक्सपीरियंस जो हमने इससे पहले कभी नहीं लिया है, दैट इज ऑफ मेंटलिस्ट, वो लेने वाले हैं। चलिए जी, टिकट्स बुक कर रहे हैं आप, मुझे पूरा यकीन है, एंड अर्ली बर्ड ऑफर का फायदा उठा रहे हैं। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में ढेर सारी बातें लेकर। तब तक के लिए आइए जानू सुनते अगला गाना मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in.
5: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है. फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है,

2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती हैं बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको। नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

0: जय सजनायन धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने, एंड इट स्टार्स सनी देओल, एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग, और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।
1: Pick of the week.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: मिर्ची बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ।
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं। ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
2: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार कुकड़ुकू। थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: तुम यो बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उभर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं, ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
4: नहीं यार, मेहनत तो है, मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
3: किसी दिन वरदान आके पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
4: ये क्या सवाल है?
5: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
6: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी। The

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही, 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। कैद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
3: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बोलिए।
2: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
3: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को?
4: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: आप सुन रहे हैं
1: मिर्ची 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ. आज आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 ईयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

ये फिल्म पहले गई थी डिंपल कपाड़िया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी, बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिंपल कपाटिया के पास, बट डिंपल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड ओहो। तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपका ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है। इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन। ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कम बैक ऑफ डिम्पल कपाडिया। इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म। इट वॉज डिम्पल। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे, वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिंपल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कमबैक विद द फिल्म ऑफ कोर्स सागर एंड रमेश सिप्पी वाज डायरेक्टिंग द फिल्म। अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? एमएफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एमएफ हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयरफुट नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: मैडम गुड इवनिंग
2: हाय
3: बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारू और सारे दांत बात कर दो
2: हेलो
3: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा मैं
2: मारूंगी ना
4: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया
4: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
2: से सॉरी नवीन
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
8: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी हैं कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाडिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाडिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाडिया ने बॉब भी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई। और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाडिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाडिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाडिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल.

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नंदीश संधु टीवी एक्टर,
4: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
5: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
4: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
5: जुनून के। आंखों में खुली हो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के।
3: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी है, सपोर्टिंग एक्टर भी है, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है
1: कह

बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाडिया, एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन यू नो इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों एक्शन फिल्मों के बाद डिम्पल कपाडिया और दो हीरोज के साथ बनाई थी सागर, विच वॉज अगेन अ स्मैशिंग हिट। वेल, इसी फिल्म का गाना आपके लिए only on Purani Jeans. You're listening to me on Mirchi, It's Hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाडिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचम दा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाडिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल, लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल, बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल।

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिंपल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिंपल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफकोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
4: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे, तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
5: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
4: जैसे
5: तो
4: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
3: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, she is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है, और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या?